किशोर हेमराज डागी र आशा भिषे, लय हेमराज डागी, शब्द खेम सारू मगर, एरेन्जर यमन खनाल, पीआर बेटी 6054-1485, उत्पादक तथा वितरक सुपा देउराली म्युजिक प्राली, प्रबन्धक यमन खनाल 9849404000। खेम सारू मगरको लोक दोहोरी एल्बम नतर्क न नतर्क सर्वत्र बजारमा।

एलजी ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कम्प्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी लाइफ्स गुड।

Willingo festivity offer अब pound host एक वर्ष को 200 Mbps internet और net TV साथ में dual band router Nokia Beacon 1.1 mesh router और net TV set-top box मात्र रूप 12 से प्रति महीना में सर्थ हरू लागू होने चाहिए छिटो बने गए Willingo।